कि जिस तरह नाम सिमर के सिद्ध बुद्ध महापुरुष सारे तर गए, नाम नाल लग के इसे तरह अमरीक पवजल तरिया, भगत अमरीक भी संसार सागर तू पार होके

भगत अम्बरीक बारे भाई गुरदास जी भी बयान करते ने अपनी पौड़ी दे विच अम्बरीक मोह वर्त है रात पई दुर्वासा आया ए राजा अम्बरीक जिन्ना दे पिता दा नाम ना भाग सी राजा अम्बरीक दा राज मध्य भारत उड़ीसा वाल सी। ए राजा अम्बरीक राज तां करदा है पर राज भाग दे सुख अपने वास्ते नहीं समझदा है। राज भी कर रहे है पर नाल भगती भी ए भी भगती तो दयाल होके विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीक की रक्षा वास्ते हर वक्त इन्हां दे कोल रखिया होया सी कि जदों भी भगत ते कोई पीड़ पवे ता सुदर्शन चक्र नू ए हुक्म सी तू अम्बरीक की रक्षा करनी। इस गल की गवाही भाई गुरदास जी भी भरते राजे अम्बरीक ने वर्त रखे पूजा पाठ कराया यज्ञ कराया और दान पुन करने वास्ते बिंद्रावन पहुंचया। बिंद्रावन जिथे कृष्ण भगवान जी रिहा करदे सन इस जगह आके 6 करोड़ गौवां राजे अम्बरीक ने दान कीतियां। 6 करोड़ गौवां दे नाल सोना चांदी अनेकां वस्तुआं होर भी दान कीतियां। धर्मी बड़ा सी नेक बड़ा सी दान पुन करके ए राजा अम्बरीक वापस अपने महलां नूं तुरिया। महलां विच आके वर्त तोड़ना सी वापस आंदे रस्ते दे विच दुर्वासा रिखी दा मेल होया। राजे ने दुर्वासा रिखी नूं नमस्कार कीती पर दुर्वासा रिखी क्रोधी बड़े सन। कहन लगे राजन तू इस वेले कित्थों आ रहे। राजा अम्बरीक कहन लगे मैं बिंद्रावन तू आ रहे हैं और महलां विच जाके वर्त तोड़ना है। मेरी इच्छा है आप जी महलां विच आके चरण पाओ भोजन छको ता मैं वर्त तोड़ा। दुर्वासा रिखी कहन लगे ठीक है राजन। जदों तक मैं भोजन ना छका तू वर्त नहीं तोड़ना मैं आवांगा जरूर। इस गल नूं भाई गुरदास जी ने अपनी वार दे विच इस तरह बयान किया है।

अमरीक मोह व्रत है, अमरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा ऋषि आया, अमरीक नाल मेल होया। ते हुण पेड़ हस उपारना, उठ नावन नदी सुधाया। दुर्भाषा ऋषि नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना व्रत तोड़ी। अमरीक कहन लगा सत बचन। ए दुर्भाषा ऋषि नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी दा मालक दुर्भाषा ऋषि। चाहिदा ता ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापद हुण दुर्भाषा ऋषि नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अमरीक राजा कहन लगा मैं वचन दिता है, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहा, दुर्भाषा ऋषि नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ, पानी पी लो। सारियां दी सलाह ते भगत अमरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। इधर वर्त तोड़िया, उधर दुर्भाषा ऋषि आ पहुंचे। भाई गुरदास जी बयान करते ने, चरणों दख पेख, चरणों दख लै पेख, ओ श्राप देवन नु ताया। जब दुर्भाषा ने देखिया कि इन्हें वर्त तोड़ लिए, तो वह श्राप देने वास्ते तैयार हो गया। अखां गुस्से नाल लाल हो गई है, कहन लगा राजन तू मैनु भोजन छकाए बगैर वर्त तोड़े है, मैं तेनों जिंदा नहीं छड़ना, इहदी सजा देवांगा, श्राप भी देवांगा। राजे ने कहा महाराज मेरा कसूर नहीं, देर होने कारण विद्वाना की सलाह से मैं वर्त तोड़े है, पर दुर्भाषा ऋषि ने एक ना सुनी। अपनी एक लिट पुट के वालां दी उन्नू मसल के सुटिया, जिदे विच्चों एक बड़ी भयानक चड़ेल पैदा हुई, जिदे हाथ विच तलवार है। और दुर्भाषा ऋषि ने हुक्म कीता उस चड़ेल नू, जेड़ी चड़ेल अपनी शक्ति नाल पैदा कीती, चड़ेल नू कहा ए जड़ा राजा अमरीक है, इन्ने मेरा सत्कार नहीं कीता, इन्ने वर्त तोड़े है मेरे आन तू पहला, इस करके तू इसनों खत्म।

दुर्वासा ऋषि ने हुक्म किया, ओ चुड़ेल जिदे हाथ विच किरपान है, भगत अमरीक नू मारन वास्ते वधी, सारे दरबारी महापुरुष हैरान हो गए कि दुर्वासा रिखी एक महापुरुष हो के इकेड़ा अतरम दा काम करन लगे। पर ओ परमेश्वर हमेशा अपने भगतां दी रक्षा करता है। ए चुड़ेल मारन वास्ते अगे वधी तां भाई गुरदास जी बयान करते ने, चक्र सुदर्शन काल रूप होए, पिहावल गर्भ गवाया। जिहड़ा सुदर्शन चक्र सी ओ काल रूप होके मौत दा रूप होके दुर्वासा ऋषि दे कोल आ गया। सुदर्शन चक्र ने सारिया तो पहला उस चुड़ेल दी ओ बांह वड़ी जिहदे विच उहने किरपान फड़ी सी, फिर दूसरी बांह वड़ी, फिर सुदर्शन चक्र ने उस चुड़ेल दा गला वड़ के उसका अंत कर दिता। चुड़ेल मर गई ते हुण सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के दुआले हो गया। ते दुर्वासा ऋषि जिहड़ा बड़े हंकार विच गुस्से नाल अखां लाल करके कोल खलोता सी, ओ हुण इन्ना डर गया, ये भी भुल गया कि मैं एक ऋषि हाँ, जे भजांगा तो लोग की कहणगे, पर जान सब नूं प्यारी है। तां की होया, ब्राह्मण भन्ना जीओ लै, कि ओ ब्राह्मण दुर्वासा ऋषि हुण भज पिया कि किसे तरह अपनी जान बचावा। ब्राह्मण भन्ना जीओ लै, रखिया ना हंगण देव सुभाया। हुण कोई भी देवी देवता इहदी रखिया करन नूं तैयार नहीं, क्योंकि जिन्हों भगवान मारे उहनूं फिर कौन बचावे। ए दुर्वासा ऋषि अमरीक दी सभा विच भजिया, इंद्र लोक चला गया। कहन लगा इंद्र देवते नूं, मेरी जान बचा। पर इंद्र कहन लगा, ए मेरे वस की गल नहीं, ता दुर्वासा ऋषि शिव लोक नूं चल पिया। शिवजी भगवान कहन लगे, हुण मेरे भी वस की गल नहीं। दुर्वासा ऋषि हुण ब्रह्म लोक नूं गया, ता ब्रह्मा जी कहन लगे, तेनू बचाना हुण मेरे वस की भी गल नहीं। ता फिर दुर्वासा ऋषि वैकुंठ नूं चला गया विष्णु भगवान दे कोल, ता विष्णु भगवान कहन लगे कि मैं भी तेनू नहीं बचा सकता। भाई गुरदास जी इस गल की गवाही देंदे ने, इंद्र लोक शिव लोक तज, ब्रह्म लोक वैकुंठ तजाया। सारियों पास्यों इसनू आसरा जदू ना मिलिया, दुखी हो गया दुर्वासा ऋषि कि सुदर्शन चक्र मेरा पिछा नहीं छड़दा।

परमेश्वर किस तरह उन्हें भगत अमरीक की रक्षा की थी। ना उन्हें दे ठाकर दई सुदामे त्रू अटल अज हूं ना टरियो अमरीक की तरह सुदामे ते कृपा की थी। त्रू भगत ते कृपा की थी भगत हेत मारियो हरनाकश भगत वास्ते नरसिंह का रूप बना के हरनाक्ष का अंत किया। नामा कहे भगत बस के सब अज हूं बल के द्वार करो। नामदेव जी कहते हैं केसव परमेश्वर नू के है सोने केसा वाला परमेश्वर ये ओ जरा परमेश्वर है वो भगतां दे वास है। इस वास्ते ता अज तक वो बल राज दे द्वारे ते खलोता होया है। तो गुरु साहिब जी भी बाणी विच कहंदे ने भाई अमरीक ने सिमरन कीता राजा होण दे नाल राज भी कमाया ते सिमरन भी ते अभय पद नू प्राप्त हो गया। आओ भाई तुस भी सिमरन करो दुनिया दे काम कार करदियां अते अपने जीवन नू

सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुरु की रीस होर कचु बिचु बोल दे से।

मकान के नजदीक चला गया। जिवें दो मित्र एक दूजे नाल गल्लां करते हैं कि दुश्मन नूं भी ना आखी जाए। मालिक कोल बैठ के कह रहा, रब तू भी बिठा से और बड़ा खतरनाक ठग, शायद दुनियावी ठगां दी जाल विचों कोई निकल जाए, पर तेरा ऐसा जाल है कोई नहीं निकल सकता। वेख न, एक तरफ बाप है एक तरफ पुत्र है, पुत्र जवान होंदे है, दोहां विच तेरी जोत है, वेखदिया पुत्र तुर जांदा है ते बाप ताई मार के रो पे, कहिंदा है मेरे जीवन दा की फर्क। ओ रो रहे ते तू तमाशा वेख, कैसी तेरी ठगी है, स्त्री नू पति लई पति नू स्त्री लई शिकवे हैं। कबीर जी कहते हैं

कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा। नाम दा तुलहा तैयार कर जिदे तो तू चढ़ के पवजल पार कर जावे। सब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा।

सतगुरु कहंदे ने देह सदा नहीं रहनी, जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां इदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

मान सकता है जेड़ा अपने घर आ गया, जिदा मन पटक रहा है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी अग विच जल रहा है। ए पटकिया होया मन किते टिकदा नहीं, जिवें अक दे अंब नालों तूंबा बिछड़िया, फिर पटकन तो बिना होर कुछ नहीं। जिधर दी हवा है हवा दे बुलियां विच तके खांदा फिरदा। ऐसे तरह जिन्हां ने गुरु दे चरण छड़ के अपने निज घर नूं छड़ के जो कूड़ियां पदार्थां दे नाल नेव लाई बैठे हन, हजूर कहिंदे हन जो घर छड़ गवावना सो लगा मन माहे। जेड़ा घर छड़ जाना है उदे लई तू रात दिन पटक रहा है, ते जिथे जाए तुद वर्तना तिस की चिंता ना है, जिथे तू सदीवी काल वसना है। जेड़ा कार्य करन लई तू संसार ते आया है उस घर दी कोई तैनू चिंता ही नहीं। ए शरीर भी एक घर है जिदे अंदर अकाल पुरख वाहिगुरु दी जोत है। मनुख शरीर लई सब कुछ करदा है, चंगे वस्त्र पहनदा है, खांदा पींदा पहनदा, सुगंधियां लाउंदा, सेजावां मानदा, पर इसने आत्मा नू जिस आत्मा दे सदके शरीर चल रहा है उसनू भुखिया ही मार छड़िया, उसनू कदे नाम दा भोजन नहीं दिता, कदे गुरु दी कृपा दे वस्त्र नहीं पहनाए, कदी सत संगत

फिर तेरी देही किसे काम नहीं आउनी, ए राख दी तेरी हो जाएगी। इसलिए गुरु रामदास पातशाह जी कह रहे हैं, ओ मेरे मन परदेसी वे, आओ करे तू क्यों भटकदा है, ए जो कुछ तेरिया अखां वेख रही हैं, ए ज्यों सपना अर वेखना, ऐसे जग को जान इनमें कछ साचो नहीं, नानक के हो बखान। इसलिए भाई अपने निज घर विच आ, विचार कर जिस कार्य लई तू आया, तैसी वस्तु विसाहिए जैसी निभ है नाल, वस्तु ओ कठी कर जो तेरे नाल चलन वाली है। ए तां जो कुछ तेरिया अखां वेख रही हैं, जदों भी प्राण पंखेरू उड़न गए, ए शिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। इसलिए मेरे मन परदेसी वे, तू परदेश विच आए, ए जगत एक सराय है, जो मनुख आया है सराय दे विच बैठ, ते सराय नू मुसाफर खाने नू जेड़ा मनुख अपना घर समझ के बह जांदा है, उनू कोई सियाना नहीं कहेगा, उनू कह देंदे हन भाई ये कोई मूर्ख है, क्योंकि मुसाफर खाना है। राती आउंदा है मुसाफर, प्रभाती तुर जांदा है, ते जे उस नू जफा पा के बह जावे भाई ये मेरा है, ता फिर सियाणप नहीं। इसलिए तू परदेसी है। धन गुरु रामदास पातशाह शब्द विच कहंदे हन, मेरे मन परदेसी वे, आओ करे अपने निज घर विच आ भाई, अमृत वेले उठ के इशनान करिए, ते फिर सत संगत विच बह के जपिए श्री वाहिगुरु। आओ करो गुरु रामदास पातशाह जी दे सोने दर्शन, क्योंकि बाणी दा दर्शन हजूर बख्शिश करदे हन, कोई प्यार दे नाल बाणी पढ़े, प्यार दे नाल सुने, ये गुरु का दर्शन है। आओ जिस प्यार विच गुरु रामदास पातशाह आप बख्शिश कर रहे हैं।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असी आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हाँ कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गलबात पंजाबी विच करते हो तो आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है तो अज तो इस पासे खास ध्यान दो। बच्चियां पास पंजाबी विच गलबात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल तां इह समा उहनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रिहा, उह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकंगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकंगे? हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे, असीं तां उस ताते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हाँ। जे कुछ उलटाई है तां ध्यान दिओ ते उह पूरी करो। आप जितनियां वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फस्ट स्टैप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हाँ। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटार हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सभना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसीं अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सज्जना मित्रां नूं भी इस सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सुचेत करो। अगों दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा। फिर लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जे साडे मनां विच प्यार ही नहीं तां सानूं रब किवें मिलेगा। रब है उन्हां नूं मिलदा है जिन्हां दे मन विच प्यार है। तुहाडे सामने है सैननाई कीर्तन विच बैठा है ए भुल के कि मैं राजे कोल जाना है, पर परमेश्वर नहीं भुलिया। भगत की पैज रखने वास्ते उस परमेश्वर ने आप सैन नाई का रूप धारिया, थैला मोढ़े ते पाया, ते राजे की माला

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शुकराने का शब्द है सुलही ते नारायण राख। समय का बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगती के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे। गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन, इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है। अपने सीपा सलार नूं हुकम दिता भई तू कश्मीर नूं जा रहे हैं जंग करन लई, ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है, उस नूं भी सोधदा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते जदों ये पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं लग्या तां सिखां ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है, प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो, तृतीय मता किश करो उपाया, मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। हजूर अगे बेनती कीती गई कि महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नूं पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो, कुछ उपा जरूर करो। ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुली समेत स्वाह हो गया। इस शुकराने वजों हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ।

हर मूर्ख प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमली अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता, नीर कहते ने पानी, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती। इसे तरह हे परमेश्वर, मैं तेरे तो बगैर नहीं जी सकता। धन गुरु नानक साहब का यह पावन शब्द आओ आप सारे प्यार नाल पढ़िए सुनिए, और जैसा प्यार सतगुरु जी अपने मन का दसते हैं, ओह जिहा प्यार असी भी

अपने सह दे नाल अपने प्रभु दे नाल रथे गए पाव जिन्हां ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया वो सारिया नूं चंगे लगदे ने क्यों जो हर का प्यारा सो सभना का

सफलियो रुखड़ा अमृत जांग का नाम जिस तरह कोई कणा दरखत होवे छां वाला फलां वाला आंदे जांदे राही दे ओदे थले बैठ के आनंद माणदे हन उड़दे होए पंछी भी उस दरख्त ते आके बैठते क्योंकि सुख मिलता है ते जड़ा साहिब है प्रभु है ए भी एक रुख है पर केड़ा अमृत इस दरख्त का नाम है भाव जिस तरह फलां वाले दरख्त ते पंछी आके बैठते ने सुख मानते ने इसे तरह जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने ओ प्रभु दा नाम जप के अमृत रूपी नाम जप के अपना जीवन

हाँ तिन बलहारे जा। पहली गल साहिब एक सफल रुख है पर इदा नाम है अमृत जिन पिया ते त्रिपत पाए ए नाम रूपी अमृत जिन्हें पीता ओ त्रिपत हो गया क्योंकि नाम विच सारे सुख हैं दुनिया दे पदार्थां विच सुख नहीं एक चीज ले लो दूसरी दी इच्छा पैदा हो जाती आज इतनी माया है गुजारा हो रहा है पर इच्छा है इस तो ज्यादा चाहिए एक चीज कार विच है पर मन दी इच्छा होर वध गई होर चीज चाहिए दुनिया दे पदार्थां दे नाल इंसान कदी रजदा नहीं पर साहब जी कह रहे ने जिन्ना ने अमृत रूपी नाम पी लिया नाम जप लिया उन्हां दे मन दी तृष्णा खत्म हो जाती है ते जिन्ना ने अमृत रूपी नाम पीता साहब जी कहंदे ने हौं तिन बलिहारे जाऊं मैं उन्हां तों

तिहाया क्यों लहे जा सर पीतर पार। कुछ सरोवर आपां बार धरती ते देखते हैं, पर एक अमृत का सरोवर इंसान दे अंदर भी है। तो साहब जी बयान करते हैं, जेड़ा ते प्रभु नाल जुड़ जाए ओदी तृष्णा खत्म हो जाती है, क्योंकि सब सुखदाता राम है, दूसर नाहीं कोई। जे सारे सुख नाम विच ने, फिर जेड़ा नाम नाल जुड़ जाएगा वो भुखा किवें रह सकदा है, वो त्याया किस तरह रह सकदा है। पर लोड़ है परमेश्वर दे नाम नाल जुड़न दी, ओदे नाम रूपी अमृत विच

गले लग के मिले, तेनू गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया, ते नाले कहन लगे दिए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नू देखी है तू आई है, कुछ भरोसा होया मन नू कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे भाई अजय राव अपने सौरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मत्था टेके, मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए, असी ते इस आस ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होणगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाईया लगदे ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने, पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो, मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते है, भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्हां ने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने, ता बेबे नानकी जी कहन लगे हाली आए ते नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी, बहार ने आना होवे कुंजां दियां डारां पहला उड़न लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राम गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वाल तुर पए, एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए, अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए, जो रते सह अपने तिन भावे सब होए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदा, अमल तो बगैर जी नहीं सकदा, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती, असी भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं, तेरे बगैर असी भी जी नहीं सकते।

अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद में मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी राह पे देखते और एक पासे भाई अजय राम और एक पासे रायपुर की तलवंडी का राजा राय बुलार और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी में मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पे थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मार दे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदे होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हो पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदियां धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई सत करतार इस सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओह धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंढ ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हैं तैनू बड़ा मैं झिड़किया तैनू मैं एक वारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल धन गुरु नानक साहब। माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पा लै आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनूं चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनूं चोला पवा। अखां खोलियां सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग कुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्म दिन ते चोला सी के रखदी है। साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाली भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लें मैं फिर मिलांगी।

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब ने कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नू मिलो, बड़ी वैराग विच है। धन गुरु नानक साहब माता नू मिल के बेबे नानकी जी नू मिलन वास्ते उठे, ता बेबे नानकी छत तू थले उतरे, भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते, पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लईआं, कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन ए नहीं हो सकदा। सतसंग ए इतिहास ये कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ये कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताकि साढ़े मना विच साढ़े हिरदे विच प्यार होवे। जे साढ़े हिरदे विच प्यार होवेगा साढ़े घर विच भी प्यार होवेगा। जिदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा। चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जेड़ा चंगा पति ना बन सके, चंगा पिता ना बन सके, जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके, जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके, सात संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता। ओ ना सिख हो सकता है, ओ ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, वो किसे गिनती विच नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने

इतने बचन कहे बहन जी है बेबे नानकी तुसी वड्डे हो तुसी मेरे पैरां ते मत्था टेको ते नहीं हो सकता सात संगत एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ते वखरी गल है इन्हां गल्लां नूं कोई मन्ने भावे ना मन्ने पर सुख तां मनण विच ही है हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं किहा मरदाने आ हुण तुसी जा के भाई अजय राम जी नूं लै के आओ शहर वासियां नूं पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछदे ने बेटा कित्थे चले साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नूं वैराग विच उठा नहीं सके धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ये प्यार भागा नाल मिलता है और इस प्यार नूं ओही जानता है जिसने ये प्यार किया भगत कबीर जी कहंदे सो कत जाने पीर पराई जां के अंदर दर्द ना पाए भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती भगत रविदास वह भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब जी कहते ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले दी के ए प्रेमा भगती दे तीर जेड़े ने जिन्हों लग जान ए जिन्हों तीर लगते ने ओही जाने ते या फिर और राम जानदा है जिदे

सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुर की रीसे होर कच्चू पिच्चू बोल दे से कूड़ी।